अंडज जेरज से तज किन्ने उत पुज खान बहोर रच दिने कहो फूल राजा हुए बैठा कहो समट पयो शंकर कैठा सगरी श्रेष्ठ दिखाए चंपव वा जुगा स्वरूप से अंपव अब रक्षा मेरी तुम करो सिख बार सिख संगरो दुष्ट जिते उठवा त्युत पाता सकल मलेश करो रणकाता जे अस तुज तव शरणे परे तिनके दुष्ट दुगत है मरे पुरख जवन पग परे तिहारे तिनके तुम संकट सबटारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल लगट नहीं आए हैं रक्षा हो ताए सब काला दुष्ट वरिष्ट ट्रै तत्काला कृपा दृष्ट तन जाए ने हरे हो ताके ताप तनक मो हरे हो रिद्ध सिद्ध कर्मो सब हो ए दुष्ट शास सक न कोई।

सवैया। पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे नहीं आने ओ राम रहीम पुराण कुरान अनेक है मत एक न माने हो समृत शास्त्र वेद सब है बहुभेद कहे हम एक न जाने हो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहे हो सब तो ये बखाने हो दोहरा सगल द्वार को छाट के कहो तुहारो द्वार बाहें गहे की लाज वस गोविंदास तुहार।

सतगुरु मैं पाया। सतगुर तां पाया सहज सेते, मन वजियां वाधाइयां, राह गुर तन परवार परियां, शब्द गावणे आईयां, शब्दों तां गावो हरि केरा, मन जने वसाया।

दुख सब विसारना। अंगीकारियो करे तेरा कार्य सब सवारना। सबना गल्ला समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे। कहे नानक मन मेरे सदारो हर नाले साचे साहिबा क्या नाही करते रहे। घर तां तेरे सब किश है जिस दे सो पावे। सदा सिफत सला तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसे आवाजे शब्द कनेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही करते रे। साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए बसिया जिन इच्छा सब पुजाइया। सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया ए वडियाइया। कहे नानक सुनो संतो शब्द तरु पे आरो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सभागे। कर सभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कौ से नाम हर कह लागे। कह नानक ता सुख होआ तित कर अनहद वाजे। आनंद सुनो वड पागियो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पै सरसे पूरे गुरते जाने। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहया पर पूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवां।

जे को खावे जे को पुंचे तिसका होय उधारू। ए वास्तत जीने जाई नित नित राखुर तारु। तम संसार चरण लगत रिय सब नानक ब्रह्म पसारू। श्लोक महला पंजवां।

ते रहते, राम नाम सुन रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभु धारी, नानक निवहे खेप हमारी, प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनि सहज गोविंद गुण नाम, जिस मन बसे सो होत निधान, सर्व इच्छा ताके पूर्ण होए, प्रधान पुरख प्रगट सब लोए, सब ते ऊच पाए स्थान, बोहर न होवे आवन जान, हर तन खाड़ चलै जन सोए, नानक जिसे प्राप्त होए, खेम शांत रिद नव निद, बोध ज्ञान सर्व तै सिद्ध, विद्या तप जोग प्रभ ध्यान, ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इसनान, चार पदार्थ कमल प्रगास, सब कै मद सगल ते उदास, सुंदर चतुर तत कविता, समदर्शी एक दृष्टिता, एह फल तिस जन कै मुख भने, गुर नानक नाम बचन मन सुने, एहो निदान जपै मन कोए, सब जुग महता की गत होए, गुण गोविंद नाम धुन बाणी, सिमरत शास्त्र वेद बखाणी, सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम, कोट अपराध साध संग मिटै, संत कृपा ते जम ते छुटै, जा कै मस्त करम प्रपाए, साध सरण नानक ते आए, जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, तिस जन आवै हर प्रवचीत, जन्म मरण ताका दुख निवारै, दुलब देह तत्काल उधारै, निर्मल सोभा अमृतता की बानी, एक नाम मन माहे समानी।

बोले सोनिहाल बोले उपरंत समा है गुरबाणी शब्द कीर्तन का सेवन बन गए भाई हरजीत सिंह जी चमक आप संगतान ने बड़े प्रेम अदब सत्कार सहित पावन गुरबाणी के शब्द कीर्तन सरवण करके कड़ा प्रसाद की देख लैके जान लगे हैं गुरु के लंगर विचों प्रसादा छक के जाने की कृपालता करनी जी। बोले सो निहाल आप समूह संगतां दा धन्नवाद जिन्होंने अपने रुझेव्यां दे विचों समा कढ के गुरु दरबार दीआं हाजरियां भरीआं ने। सतगुरु सभनां नूं दरों करों गुरसिक्खी जीवन नाम दी दात दे के नवाजन सरवण करदे हां गुरबाणी शब्द कीर्तन भाई हरजीत सिंह दी चमक दिल्ली वालिआं दे कीर्तन जत्थे पासों भुल्ला चुक्कां दी खिमा आप संगतां दा धन्नवाद। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।

आनंद मंगल सुख पाए, संतो राम नाम नसतरिय, उठत बैठत हर हर ध्याइय, अनदिन सुकृत करिय रहाओ। संत का मार्ग धर्म की पौड़ी, कोवड़ भागी पाए, कोट जन्म के किल विख नासे, हर चरणी चित लाए। उस्तत करो सदा प्रभ अपने, जिन पूरी कल राखी, जी जंत सब भय पवित्रा, सतगुर की सच साखी। बिघन बिनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। बिघन बिनासन सब दुख नासन, सतगुर नाम दृढ़ाया, खोए पाप भय सब पावन, जन नानक सुख घर आया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, गुरु साहब जी दे वारक चरणा दे विच सजे हुए दीवान दियां हाजरियां पर रही जुड़मिल बैठी गुरु प्यारी सत संगत, गुरु साहब जी दी मेहर सदका सजे दरबार दियां हाजरियां पर रहे सी। धन्नवाद गुरु सवारे ढाडी जथेदार आप जी नूं ढाडी वारां गुर इतिहास सरवण करवा रहे सन। गुरु चरणा दे विच दीवान दी समाप्ति दी अरदास हुई है। बख्शिश स्वरूप गुरु साहब जी ने पवित्र मुख वाक बख्शिश किया है जो आप जी ने सरवण किया है। पातशाह मेहर करन बख्शा होया पावन उपदेश साडी जिंदगी दा जीवन दा आधार बने। ये गुरु चरणा विच अरदास और इहदे नाल ही सजे दीवान की संपूर्णता है। कड़ा प्रसाद की देग का वर्तारा हो रहा है, जिन्होंने प्राप्त नहीं किया प्राप्त कर सकते हो। उपरंत गुरु का लंगर सारी संगत वास्ते तैयार है, सब ने आपो अपनी लोड़ मुताबक छके जाना। तो आओ सुखासन की सेवा, सोहला बाणी का पाठ होगा। गुरु साहब जी ने जिस स्थाना वाले जाएंगे उपरंत सारे ने गुरु चरणों में खुशी प्राप्त करने। जुड़मिल बैठी समुची संगत का धन्यवाद। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतनाम वाहिगुरु साहब जी। सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, जै किर कीरते आखी है करतिका होई बिचारो, तितकर गावो सोहला सिवर सृजनहारो। तुम गावो मेरे निरपाउ का सोहला, हम हमारी जी सोहला सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीड़ी संभाली देखेगा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै तेरे दाते कवन शुमार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाओ तेल, देह सजने सीसड़ियाँ जो है साहब सो मेल। घर करे हो पहुँचा सदड़े ने तपवन, सदन हारा सिमरिया नानक से दे अवन। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको बेस अनेक बाबा। जै घर करते कीरत होए सो घर आख वडाई तोए रहाओ। विसै चसया कड़ियां पैरां, थिति वारी मां हुआ सूरज कुर तनेक। नानक करते के केते वेस राग धना श्री महला पहला। गगन मै थाल रव चंद दीपक बने, तारिक मंडल जनक मोती। धूप मल्यान लो पवन चवरो करे, सगल बनराई फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वा जंत भेरी रहाओ। सहस तव नैन नन नैन है तोहे कहो, सहस मूर्त नायक तोही। सहस पद बिमल नानेक पद, गंध बिन सहस तव गंध विचलत मोही। सब मैं जोत जोत है सोए, तिस दै चानन सब मैं चानन होए। गुर साखी जोत प्रगट होए, जोत भावै सो आरती होए। हर चरण कमल मकरंद, लोभत मनो अन दिन मोहे आही प्यासा। कृपा जल दे नानक सारें का होए, जाते तरण आए वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध गर्भ भरिया, मिल साधु खंडल खंडा ही। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा ही। कर साधु अंजलि पुन वड्डा ही, कर दंडौत पुन वड्डा ही। रहाओ
ਸਾਕਤ ਹਰਿ ਸਾਧਨਾ ਜਾਣਿਆ ਤਿਨ ਅੰਤਰ ਹਉਮੈ ਕੰਡਾ ਹੀ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੈ ਚੁਭੈ ਦੁਖ ਪਾਵੈ ਜਮਕਾਲ ਸਹਿ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੀ ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ ਦੁਖ ਜਨ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਹੁ ਸ਼ੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੀ ਆਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੀਕ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੀ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ ਨੀਹਾਂ ਖਾੜ ਚਲਾਉ ਹਰ ਲਾਹਾ ਅੱਗੇ ਬਸਨ ਸਹੇਲਾ ਔਦ ਕਟੈ ਦਿਨ ਸਰਹਿਣਾਰੀ ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸੁਆਰੀ ਰਹਾਉ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਬੇਕਾਰ ਸੰਸੀ ਮੈਂ ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਜਿਸੇ ਜਗਾਈ ਪੀਆ ਵੈ ਹਿਰਾਸੁ ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਨ ਜਾਨੀ ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜੋ ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨੈ ਬਸੀਰਾ ਨਿਜ ਕਰ ਮਹਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੇ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹ ਸੁਖ ਮੰਗ ਮੁਖ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਤੂਰੇ।

साहब जी, ठाकुर तुम शरण आई आया, उतर गए हो मेरे मन का संसार। जब ते दर्शन पाया धन वाहिगुरु साहिब जी, तिलंग घर दूजा महला पंजवां, तुद बिन दूजा नहीं कोई, करतार करें सो होए। तुद बिन दूजा नाहीं कोई,

कृपा करें गावा प्रभ सोए, नामृतन सब जग में लोए। गुरमुख बाणी मीठी लागी, अंतर बिकसे अंदर लिव लागी। सहजे सच मिलिया प्रसादी, सतगुर पाया पूरे वडभागी। हाँ मैं ममता दुर्मत दुख नास, जब हृदय राम नाम गुणतास। गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास, जब हृदय रविया चरण निवास। जिस नाम दे सोई जन पाए, गुरमुख मेले आप गवाए। हृदय साचा नाम वसाए, नानक सहजे सा समाए। गौड़ी माला तीजा, मन ही मन सवारिया, पै सहज सुभाए। शब्द मन रंगिया लिव लाए, निज कर वसिया प्रभ की रजाए। सतगुर सेवै जाए अभिमान, गोविंद पाइये गुणी निधान। रहाओ मन बैरागी, जहाँ शब्द पौ खाए। मेरा प्रभ निर्मला, सब तेरे असमाए। गुर कृपा ते मिले मिलाए, हर दासन को दास सुख पाए। मेरा हर प्राप बिन बिद पाया जाए, हर कृपा ते राम गुण गाए। त्रिग बहु जीवन, जित हर नाम न लगे प्यार। त्रिग सेज सुखाली, कामण मोह गुबार। तिन सफल जन्म जनना में आधार। त्रिग त्रिग गृह कुटुंब, जित हर प्रीत ना होए। सोई हमारा मीत, जो हर गुण गावे सोए। हर नाम बिना मैं अवर न कोई, सतगुर ते हम गत पत पाई। हर नाम ते आया दुख सगल मिटाई, सदा आनंद हर नाम लिवलाए। गुर मिले हमको शरीर शुद्ध पई, हमें तृष्णा सब अगन बुझई। बिनसे क्रोध खिमा गैलई, हारे आपे कृपा करे नाम देवै। गुरमुख रतन को विरला लेवै, नानक गुण गावै हर अलख अभेवै।

मन कर हला सतगुरु पुरख त्याय रहाउ। मन करहला विचारिया हर राम नाम त्याए, जिथे लेखा मंगिए हरिया पेले छड़ाए। मन करहला अत निर्मला मल लागी होमें आए, प्रताख पेर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए।

मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ त जाए पाखंड लोभी मारिए जमडंड देस जाए। मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लै जाए। मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए ए मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए। मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगा पहनाया हर आप लया गल लाए। मन करहला गुर मन्या गुरमुख हर कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए। गौड़ी महला चौथा। मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमुदर दे निहाल। मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ। मन करहला विचारिया मन मुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल। मन करहला मेरे प्यारिया सतसंगत सतगुर भाल सतसंगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल। मन करहला बटभागिया हर एक नजर निहाल आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल।

मान करहला तू चंचला चतुराई षड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल। मान करहला वडभागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारे अड़ा जमकाल। अंतर

जब ए मन में करत गुमाना, ताबे बावर फिरत बेगाना। जब ए हुआ सगल की रीना, ता तेरे मैया घट घट चीना। सहज सुहेला फल मसकीनी, सतगुर अपने मोह दान दीनी रहाओ। जब किस कोए जान समंदा, तब सगले इस मेले फंदा। मेर तेर जब इन्हें चुकाई, ताते इस संग नहीं बैराई। जब इन अपनी अपनी तारी, तब इसको है मुश्किल पारी। जब इन करण हार पछाता, तब इसनो ना किस्ता।

जाबे ने किश कर माने भेदा, तबते दुख डांडी अर खेदा। जाबे ने को एक ही बुझिया, तबते इसनो सबके सूझिया। जाबे तावे माया अर्थी, ना त्रिपतावे ना तिसला थी। जब इसते हो जोड़ा, पीछे लाग चली उठ कौड़ा। कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदिर में दीपक जलियो। जीत हार की सोची करी, तो इस कर की कीमत परी। कारण करावन सब किसे कह, आपे बुद्ध विचार विवेक। दूर न नेरे सब कह संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा। गौड़ी महला पंजवा। गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलया जिस मस्तक पागा। तिस कह हृदय रविया सोए, मंतन शीतल ने चल होए। ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहा। जास जपत पव अपदा जाए, तावत मनु आया बैठाए। जास जपत फिर दुख न लागे, जास जपते हो मैं बागे। जास जपत वास आवे पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा। जास जपत ते तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे।

तो खुला था। जास जपत मुश्किल कशु न बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत ए निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए।

अखंड कीर्तन तन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सत गुर पूरा। गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर धारे, पंच जना सों संग निवारे, दस इंद्री कर रखे वास, ताके आत्मा होए प्रकाश।

मिट्यो सकल दुराव सहजे हुआ साधु संग सहज मिल्यो पार ब्रह्म निसंग सहजे गृह में सहज उदासी सहजे दुविधा तन की नासी।

सहज कथा मैं आत्मरसया, ताके संग अविनाशी वसया। सहजे आसने स्थिर पाया, सहजे अनहत शब्द वजाया। सहजे रुण चुणकार सुहाया, ताक घर पार ब्रह्म समाया। सहजे जाको परियो कर्मा, सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा। जाके सहज पया सो जाने, नानक दास ताके कुर्बान। गौड़ी माला पंजवां प्रथमे गर्भवास ते टरिया, पुत्र कलत्र कुटुंब संग जुरिया। भोजन अनेक प्रकार बहु कपरे, सर पर गवन करेंगे बपुरे। कवन स्थान जो कबो न टरे, कवन शब्द जित दुर्मत हर रहा।

गेर तार तरण गगनेर तारे राव सास पवन पावक नीरारे दिनस रैन बरत अर भेदा छास्त सिमृत बिन सेंगे बेदा। तीर्थ देव देहुरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गवन करे गो सगलो लोगा। जात वर्ण तुरक अर हिंदू पश पंखी अनक जोन जिंदु सगल पासार दिसे पासारा बिनस जाए गो सगले अकारा। सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निचल सच थाना। तहां संगत साध गुण रसै अन पौ नगर तहां सद वसै तै पौ परमा सोग न चिंता आवन जावन मृत न होता।

कह नानक जिस कृपा करे निचल थान साध संगत रहे गौड़ी महला पंजवा जोई समारे सोई सूरा जोई समारे सोई पूरा जोय समारे तसै वडियाई जोय समारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जि दुबदा मार गवावै इसै मार राज जोग कमावै रहाउ जोय समारे तिसको पौ नाहै जोय समारे सो नाम समाहै जोय समारे तिसकी तृष्णा बुझै जोय समारे सो दरगाह सिजै

ते सोवे गति। जो इस मारे तिस काया आगने, जो इस मारे सोने चलतने, जो इस मारे सोवट पागा, जो इस मारे सोवंदन जागा। जो इस मारे सो जीवन मुक्ता, जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता, जो इस मारे सो ईसो ज्ञानी, जो इस मारे सो सहज त्यानी।

तस्पही खलासी होई सकल सिद्ध। गौर दुबदा जाकी है मारी, कौ नानक सो ब्रह्म बिचारी। गौड़ी महला पंजवा, हर स्यों जुरे तो सबको मीत, हर स्यों जुरे तने चल चीत। हर स्यों जुरे न व्यापे काड़ा, हर स्यों जुरे तो हो निस्तार। अरे मन मेरे तू हर स्यों जोर, काज तुहारे नाई होर रहाओ। वड्डे वड्डे जो दुनियादार, काहू काज नाही गावार। हर का दास नीच कुल सुने, तिस कै संग खिन में उदरे। कोट मज्जन जाके सुन नाम, कोट पूजा जाके है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुर ते बिद जाने। मन अपने में फिर चेत, बिन सजाए माया के हेत। हारे अविनाशी तुमरे संग, मन मेरे रच राम कै रंग। जाके काम तरे सब भूख, जाके काम न जो है दूत।

का सो सेवक नानक जिस पागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर पे यार जारी त्यों जी मैं साखत नाम बिसारी।

बिन सिमरन त्रिग कर्म करास, काग बतन बिष्टा मैं वास। बिन सिमरन पैकू कर काम, साकत बेसु अपूत ने नाम। बिन सिमरन जैसे सिंह सितारा, बोले कूर साकत मुख कारा। बिन सिमरन कर तब की न्याय, साकत तान परिष्ट फिराए।

0: खरा बावे कार एक उंदा खाए चला था उतना भी काई कार जल थल जिया पूरिया लोहा कारा कार ओ जे आख सो तू है जाने तिन्हा पी तेरी सार नानक भगता पुख सलाण सच नामादार सदा अनंत रहे दिन राती गुणवंते आपा शार महला पहला।
1: मिट्टी मुसलमान की पेड़ है पे कुमियार कड़ भांडे।

0: पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है, पड़ पड़ परी है साथ, पड़ पड़ बेड़ी पाई है, पड़ पड़ गड्डी है खात, पड़ी है जेते वर्ष वर्ष, पड़ी है जेते मास, पड़ी है जेती यार जाओ, पड़ी है जेते सास। नानक लिखे एक गल होर हूं मैं, चखना चाख महला पहला।
1: लिख लिख पड़े आते।

पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ वैसनार कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी खप होए कार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार कूड़ मिठा

0: सूत जत गंडी सतवट एव जने उजी काह तपंडे कत ना टुटे ना मन लगे ना जले ना जाए तन सुमान स्नान काल जोगल चले पाई चौंकड़ मोल अनाया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओ मुआ ओ चढ़ पिया वेता गा गया महला पहला।
1: लख चोरियां लख जारियां लख कूड़ियां लख गाल लख ठगियां पहनामियां रात दिन जी नाल तक कपाओ कतिए बामन वड्डे आए कोहे बकरा रिन खाया सब को आखे पाए होए पुराना सुटिए पी फिर पाइए होर नानक तग ना टुटई जे तग होवे जोर महला पहला।
0: नाय मनिए पत उपजै सलाही ससु दरगे अंदर पाइए तग ना टूट सपूत महला पहला।
1: तग ना इंद्रे तग ना नारी पलके थुक पवे निर्दाड़ी तग न पैरी तग न हथी तग न जेवा तग न अखी वे तगा पे वत वट धागे अमरा।

0: श्लोक महला पहला। गौ ब्राह्मण को करलावे गो बर्तन ना जाए, धोती तो टिका तय जप माली तान मलेशा खाए, आंतर पूजा पढ़े कते बाल संजम तुरका पाई, छोड़ी ले पखंडा नाम लिए जाए तिरंगा। महला पहला।
1: मानस खाने करे निवास श्री विगायन तिन गलता, तिन कर ब्राह्मण पूरा ना दुना पिया वह ओई साध, कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार, शर्म धर्म का डेरा दूर नान कूड़ रहा भरपूर, मत्थे टिका तेड़ धोती खाई हाथ श्री जगत कसाई, नील वस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश ताले पूंज है पुराण, अपा ख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किस न जाना, देख के चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार, मत पिटे वे मत पिटे एहो अन असाडा फिटे, तन फिटे वेड़ करेन मन झूठे चुली परेन, ओ नानक सच दे आईए सुच होवे तां सच।

0: जाए। नानक काढ़ी है सुधीर समाए, चंगे चंगा कर मन्ने मंदे मंदा होए। आज के ना किया जे लिखा है वरतै सोई महला दूजा।
1: सलाम जवाब दोवे करे मुंडो को था जाए, नानक दोवे कुड़िया थाए नकाई पाए पौड़ी जिस विस्क।

पौड़ी नानक तरह जपनी हरता के पारावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मारिक नंगली जंजीरी एक तुरी चढ़े बिसार आप कराए करे आप हो कैसो करी पुकार नानक करना जिन किया फिर तिस ही।

प्रभु दत्तो दातार परयो जाचक एक शरणा मिले दान संतरेण जेह लग पौ जल तरना बिनत करौं अरदास सुनौं जे ठाकुर पावे देह दर्श मन चाओ भगत एह मन ठहरावे बड़े ओ चिराग अंधियार में सब कल उधरी एक नाम धर्म प्रगट सगल हार भवन में

जो तुद सेवै तिन भउ दुख नाहै, गौर प्रसाद नानक गुण गाहे। जो दिसै सो तेरा रूप, गुण निधान गोविंद अनूप। सिमर सिमर सिमर जन सोए, नानक कर्म प्राप्त होए। जिन जपिया तिस कौ बलिहार,

नानक प्राब लोचापुर संत जना के बांछो तूर कहो नानक प्राब लोचापुर संत जना के

वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरां दी पावन हजूरी अंदर जुड़ बैठे, गुरु प्यारे, गुरु सवारे, अति सत्कार योग सत्संगी जनों, वडभागे हाँ जिथे आप जिया ने अमृत वेले नूं मुख रखदिया लड़ीवार चल रहे श्री सहज पाठ तो उपरंत शब्द चौंकी आसा की वार दे कीर्तन श्रवण कीते ने। सरबादे भले दी पंथ दी चढ़दी कला दी अरदास तो उपरंत धन गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी ने

जी की फतेह। सतनाम धन वाहिगुरु साहिब जीओ, कोट पराद हमारे खंडो, अनेक विधि।

जो पै राम राम रत नाहीं, ते सब धर्म राय कह जाही। जो पै राम राम रत नाहीं, ते सब धर्म राय कह जाही। रहाओ,

तिनको दया सुपने पी नहीं। चार चरण कहें बहु अगर, साधु सुख पावे काल सागर। कहो कबीर बहो काए करीजै, सरबस छोड़ महारस पीजै।

पाक परवतगार तू खुद खसम वड्डा अतोल, दस्तगीरी देह दिलावर तू ही एक करतार, कुदरत करन खालक नानक तेरी टेक। दस्तगीरी देह दिलावर तू ही एक करतार, कुदरत करन खालक नानक तेरी टेक। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।

है सुनाया। तुझे वरदाता तू है निरंजना, तू है सच मेरे मन पाया, सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा, मन अंतरों में रोग है परम पुले मन मुख दुर्जना, नानक रोग वाय मिल सदगुर साधु सजना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग सो गुरमुख हर गुणता सो जन नानक हर शरणागति। हर मेले गुर साबास पौड़ी तू करता पुरख अगम है, किस नाल तू वड़ी है तू दूजे बड़ हो सो आखी है, तुझे हाथ में पड़ी है तू घर का टेक वरदा गुरमुख प्रगड़ी है। तू सच्चा सबसदा खसम है सब दू तू चढ़ी है, तू करे सो सच्चे हो सीता कायत करी है। श्लोक महला चौथा, मैं मंतन प्रेम परम काठे पैर लगन, जन नानक कृपा धार पाप गुरमुख सुख बसन। महला चौथा, जिनंदर प्रीत ब्रह्म के जो बोलते वह सोहन, नानक हर आप जानदा इन लाई प्रीत ब्रह्म। पौड़ी तू करता पपोल पुलन विच नाए, तू कर सचे भला गो शब्द बुझाई। तू कर्ण कान सम्राट है दूजा को नाए, तू साहेब अगम दयाल है, तू साहेब अगम दयाल है सब तू ते आए सब जी तेरे, तू सब सदा तू सब छड़ा। श्लोक महला चौथा, सुन साजन प्रेम संदेश राखी तार लगन, गुर तुठे सज्जन मेले आ जन नानक सुख सवन। महला चौथा, सतगुर दाता दयाल है जिसनों दया सदा होए, सतगुर अंदर निर्वैर है सब देखे ब्राह्मिक सोए। निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों तिष्ठिया न कोई, सतगुर सब ना दा भला मनाएं दा तिसदा बुरा क्यों होए। सतगुर नो जे हा कोई सदा ते हा बल पाए कोई, नानक करता सब के जानदा जिदू किस गुजा ना होए। पौड़ी जिसनो साए बड़ा करे सोई बढ़ जाने, जिस साए पावे तिस बगले सो साए मन पाने, जे कोस दिरीस करे सो मूड़ा जानी। जिसनो सतगुर मेरे सो गुण वै गुण आख बखाने, इस नानक सच्चा सच है सच बूझ समाणी। श्लोक महला चौथा, सत निरंजन अमर निरभउ निर्वैर निरंकार, जिन जपै कमन निक चित तिन लता हो मैं पार। जिन गुरमुख हारा दया तिन संत ना जयकार, कोई निंदा करे पूरे सतगुर की तिसनो विट विट कह सब संसार। सतगुरु जप वरतदा हर आपे रखनहार, तन तन गुरु गुण गावदा तिसनो सदा सा नमस्कार। जिन नानक तिन को वारिया जिन जपया सजनहार, महला चौथा आपे धरती साजन आपे आकाश, विचा पे जन तो पायन मुखा पे दे गिरा, सब आपे अवरदा पे गुंता, जन नानक नाम त्याय तू सब किल विकटे गुंतास। पौड़ी तू सच्चा साहेब साचा सच सच्चे पावे, जो तू सच लां दे तिन जम कंकर नीर नावे। तिनके मुख दर उजले जिन हर हृदय सच्चा पावे, कुड़ियार पिछा सटियन कूड़ हृदय कपट महान दुख पावे। मुँह काले कूड़ियारियां कूड़े यार कूड़ो हो जावे। श्लोक महला चौथा, सतगुरु धरती धर्म है जिस विजे हा को बीजे ते हा फल पाए, गुरसिखी अमृत बीजे आ तिन फल तिन अमृत फल हर पाए। उन हालत बल मुख उजले ओ ए हर दरगह सच्ची पहना, एक ना अंदर खोट नित खोट कमावे। ओ जे हा बीजे ते हा फल खाए, जा सतगुरु सब सराफ नजर कर देखे। स्वभाव गिर सब गड़ाए, ओ जे हा चितवै नित ते हा पार, ओ जे दे बजाए। नानक दोहे श्री खसम आपे वरतै, नित कर कर देखै चल सवाए। महला चौथा, एक मन एक वरतदा जित लगै सो थाए पाए, कोई गल्लां करे कनेरियां कारवत होवै साई खाए। बिन सतगुर सो जी ना पवै, अहंकार ना विचों जाए। अहंकारिया नो दुख पुकै तड्डे घर घर मंगाए, कू ठगी गुजी ना रह मुलमा पाच लै जाए। जिसो वै पूर्व लिख्या ते सतगुर मिलै प्रभाए, ज्यों लोहा पास भेटिए मिल संग सुवर्ण होए जाए।
ਜਨਾ ਨਕੇ ਪ੍ਰਭ ਤੂੰ ਤਨੇ ਜਿਉ ਭਾਵੈ ਤਿਵੈ ਚਲਾਏ ਪੌੜੀ, ਜਿਨ ਹਰ ਹਿਰਦੈ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਆਪ ਮਿਲਾਏ, ਤੂੰ ਗੁਣ ਕੀ ਸਾਂਝ ਤਿਨ ਸਿਉ ਕਰੀ, ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਜਲਾਏ, ਅਵਗੁਣ ਵਿਕਨ ਪਲਰੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਏ, ਬਲਹਾਰੇ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਜਿਨ ਅਵਗੁਣ ਮੇਰ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟੀ ਆਏ, ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਏ ਵੱਡੇ ਕੀ ਗੁਰਮੁਖਾ ਲਾਏ, ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਏ, ਜੋ ਅੰਦਿਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੈ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਨਰਮ ਸੁਸੰਜਮ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੈਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਤਾਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ ਮਨ, ਹਰ ਨਾਮ ਮੋਹਰਾ ਕਰਾਵੈ, ਜੋ ਚਿਤ ਲਾਇ ਪੂਜੇ ਗੁਰਮੋਹ, ਸੋ ਮੱਚੇ ਸੋ ਮਨ ਇੱਛੇ ਬਲ ਪਾਵੈ, ਜੋ ਨਿੰਦਾ ਕਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੇ ਦਿਸ ਕਰਤਾ ਮਾਰ ਦੇ ਵਾਵੈ, ਫੇਰ ਉਹ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸਤ ਨਾ ਆਵੈ, ਵਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੀਜਾ ਆਪੇ ਖਾਵੈ, ਨਰਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਲੈ ਖੜਿਆ, ਜੋ ਤਸਕਰ ਪਾਏ ਗੱਲਾਂ ਵੈ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਪਵੈ, ਤਾਂ ਉਬਰੈ ਜਾਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਿਆਵੈ, ਹਰ ਬਾਤਾਂ ਆਖ ਸੁਣਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਰ ਤੇ ਵੈ ਭਾਵੈ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨੈ, ਉਹ ਮਨ ਮੁਖ ਗਿਆਨ ਮੁੱਠਾ ਬਿਖ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਸੰਦਰ ਕੂੜ ਕੂੜੋ ਕਰ ਬੁੱਝੈ, ਅਨੋਂਦੇ ਝਗੜੇ ਦੈ ਉਸਦੈ ਗੱਲ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਭਰੋਸੇ ਕਰੇ ਬਹੁ ਤੇਰੀ, ਉਸਦਾ ਮੋਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿਸੇ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਉਹ ਘਰ ਘਰ ਹੰਡਾ ਜੋਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਾਗਣ, ਉਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਜੋੜੇ ਪੀ, ਉਸ ਵੀ ਲੱਛਣ ਲਾ ਗੁਰਮੁਖ ਸੁਲਪਤ ਵਰਤਾ, ਉਸਦਾ ਪਾਸ ਛੱਡ ਗੁਰ ਪਾਸ ਬਹਿ ਜਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਪੇ ਆਪਣਾ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਪੇ ਭਲਾ ਸੋ ਆਪਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਪੰਚੋ ਲਾਹ ਮੂਲ ਸਭ ਗਵਾਇਆ,

अंदर प्रीत नहीं हर के इसे की चरक वे रायन मन मुख बेताले सदगुरु नो मिले सो अपना मन ताए रखे ओ आवर्त अपने वतना ले जन नानक न गुर मेल सुख देवे इका पे वकडे ठगवाले महला चौथा जनांदर नाम निदान है हर तिन के दकार दया दे रास तिन जुकी मोताजी लोकन की हर प्रभ अंग कर बैठा पास जा करता वल ता सब को वल सब दर्शन दे करे सबास साहो पाशा सबर का किया सब जन को आए करे रह रास गुरपुरे की वड़ी वड्याई हर वड़ा से बतुल सुख पाया गुरपुरे दान दिया हने चल नित बख्शे चढ़ सवाया कोई नंदक वड्याई देख न सके सो करते आप चाहे जन नानक गुण बोले करते के भगतान वर्ष रखदा आया पौड़ी तू साहेब अगम दयाल है वड़दाता दाना तुझे बड़ हो मैं और कौन जिसनावे तू है सुगड़ दे मेरे मन पाना मोक नाम जिसाम दा सब चलन हारा बन जाना जो बिन सच्चे और चेत लाए देसे कूड़ा कूड़ा तन माना नानक सच दया तू बिन सच्चे पच पच मुया जाना श्लोक महला चौथा अगों दे दस पाव न दिचे चे पिछों दे आख्या कम ना आवै आद विच फिर मन मुख बेचारा गली क्यों सुख पावे जिस अंदर प्रीत नहीं सतगुरु की सो कूड़ी आवे कूड़ी जावे जे कृपा करे मेरा हर प्रभु करता ता सतगुर बार ब्रह्म नदरी आवे जा प्यो पिवे ता शब्द गुर केरा सब काड़ा आंदे साल परम चुकावे सदा नंद रह दिन राते जन नानक अंध नर गुण गावे महला चौथा गुरु सतगुर का जो सिखा काए सो पलके उठा नाम त्यावे उदम करे पलके परबाती स्नान करे अमृतसर नावे गुरु सतगुर उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब के लिए पाप दुख लै जावे इस विचड़ै दिवस गुरु बाणी गावे बहन ध्यान ध्यान नाम त्या जो साध ग्रह त्या मेरा हर हर सो गुर से गुरु मन भावे जिसनों दयाल होवे मेरा स्वामी तिस गुर से गुरु उपदेश सुनावे जन्ना धूड़ मंगे तिस गुर की गुर सिखी जो आप जपै वरा नाम जपावे पौड़ जो तुझ सच त्याय दे से विरले थोड़े जो मन चित करा दे तिनकी बरकत खाए असं करोड़े तुदनों सब ध्यान दी से थाए पे जो साहेब लोड़े जो बिन सतगुर से वे खांदे पैंदे से ओ मुए मजा मैं कोड़े ओ आए दर मिठा बोल दे बाहर विस्करन मुख खोले मन खोटे दे विछोड़े श्लोक महला चौथा मल जी भरिया नीला काला खिदोलड़ा तिन वे मुख वे मुख नो पाया पासंत ही कोई जगत में बहन जगत जगत में गोपाड़ सगवी माल लाए मन मुखाया पराई जो निंदा चुगली नो वे मुख करके भेजिया ओत भी मोह काला तो आमे मुखा दा कया तर सुनया जगत सब जगत विच तर सुनया ज सब जगत विच सब जगत विच भाई वे मुख सन नफरै पौली पौंदी फाह होए उठके घर उठ कर आया अगै संगति कुल में वे मुखर लाना मिलता बोटी भतीजी विरान घर पाया हलत बल दो में गए नित भूखा को कहते आया तन तन स्वामी करता पुरख है जिन न्याओ सच व्याप कराया जो निंदा कह सक पूरे की सो सच है मार्च पचाया हे अख तिन आख्या जिन जगत सब उपाया महला चौथा साहेब जिसदा नंगा होवे साहेब जिसदा नंगा भूखा जिसदा नफर कितों रज खाए जे साहेब क्या करवा तो हुआ तां सब रह जे साहेब क्या करा तो हुआ तां नफरै आत्मा बहन दी कितों पाए जिस दे सेवा कीती फिर लेखा मंगे सा सेवा औखी होई नानक सेवा करो हर गुर सफल दर्शन की फिर लेखा मंगे ना कोई पौड़ी नानक विचार है संत जन चार वेद कहंदे भगत मुख है ते बोल दे से वचन हो बंदे

क्या ओ खट्टे क्या ओ खावे, जिसंदर सहसा दुख पया, निर्वैर नाल जे वैर चाहे, सब पाप जगत का तिन सिर लिया, उस अग्गे पिछे ढोई नाहीं, जिसंदर जिसंदर निंदा मोह अंब पया, जे सोने नु हथ पाए ता खेऊ से ती रल गया, जे गुर की सरनी फिरो आवे ता बिसले अगुन बख्श लिया, जन नानक कंद नाम ते आया, हर सिमरत किल पाप गया पौड़ी, तू है सच्चा सतू सब तू तू दीवान, सब ऊपर तू दीवान, जो तू सत्यां दे सत्सेवम से सच्चे सेवा तान तेरा मान, जो तू सत्यां दे सत्सेवम सच्चे तेरा मान, उन्ना अंदर सचमुख उजले सच बोलन सच्चे तेरा तान, से पग जिने गुरमुख सा लाया सच शब्द निशान, साजे सच्चे सेम दे तिन वारी सच्चा कुर्बान, श्लोक महला चौथा तुर मारे पूरे सतगुरु सही हुन सतगुर मारे, जे मेलनो बोता तेरा लोची है, जे मेलनो बो तेरा लोची है, ना दे मिलन करता रे, सत्संग टोई ना लहन विसंगत गुर विचारे, कोई जाए मिले हुन उनानो, तिस मारे जम जंदारे, गुर बाबे फिट के से फिटे, गुर अंगद की ते कूड़े आ रे, गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या ते ना विचारे, गुर चौथी पीढ़ी टिकिया तिन निंदक दुसवतारे, कोई पुत सिख सेवा करे सतगुरु की तिस कार्य सब सवारे, जो 600 फल पायसी पुत तन लक्ष्मी खड़ मेले हर निस्तारे, सब निदान सतगुरु विच जिस अंदर हर उतारे, सो पाए पूरा सतगुरु जिस लिखिया लिख ले लारे, जन नानक मंगे तूड़ तिन जो

अखाड़ा हर प्रीतम सच्चे का, तिना अपने जो सभा निभाए, अपने भक्तों की रख करे हर स्वामी, निंदका दुष्टा के मौका लेकर आए, सतगुरु की वड्याई नित रह सवाई, हर कीर्त भक्त ने दाग सुनाए, अंधे नाम जपो गुर सिखो, हर करता का सतगुरु करी वसाए, सतगुरु सतगुरु की बाणी सत सत कर जाना, गुर सिखो हर करता मुंह कढ़ाए, गुरसिखा के मुख मौजले करे हर प्यारा, गुर का जयकार संसार शब्द कराए, जन्ना नगर का दास हर दासन की हर पैज रखाए, पौड़ी

सच सच्चे के जन भगत है, सच सच्चा जिनी आराध्या, जिन गुरमुख खोज टंडोलिया, तिन अंदरों ही सच लादया। सच साहिब सच जिनी सेविया, काल कंटक मार तिनी साध्या, सच सच्चा सबदू वड्डा है, सच सेवन से सच रलादया। सच सच्चे नो शाबाश है, सच सच्चा सेव फला दया। सलोक महला चौथा, मनमुख प्राणी मुग्ध है, नामहीन परमाए, बिन गुर मनुआ ना टिके, फिर जुनी पाए। हर प्रभ आप दयाल होए, ता सतगुर मिलिया आए, जन नानक नाम सलाहे, तू जन्म मरण दुख जाए। महला चौथा, गुर सलाही अपना, भो बिद रंग सुबाए, सतगुर सेती मन रता, रखिया बणत बनाए। जेवा सलाहे नर जी, हर प्रीतम चित लाए, नानक नावै की मन भुख है, मन तृप्त है, हर रस खाए पौड़ी। सच सच्चा कुदरत जानिए, दिन राती जिन बनाइया, सो सच सलाही सदा सदा, सच सच्चे किया वड्याइया। सलाही सच सलाह सच, सच कीमत किने ना पाइया, जा मिलिया पूरा सतगुरु, ताज हाजर नदरी आइया। सब गुरमुख जिनी सलाहिया, तिना भुखा सब गवाइया। श्लोक महला चौथा, मैं मन तन खोज खोजेंदिया, सो प्रभ लद्दा लोड़, विष्ट गुरु मैं पाया, जिन हर प्रभ दिता जोड़। महला तीजा, माया तारी अत अन्ना बोला, शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला, गुरमुख जापै शब्द लिव लाए, हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए। जो तिस भावै सो करे कराया, नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी। तू करता सब किछ जानदा, जो जिया अंदर वरतै, तू करता आप अगणत है, सब जग विच गणतै। सब कीता तेरा वरतदा, सब तेरी बणतै, तू कट कट इक वरतदा, सच साहिब चलतै। सतगुर नो मिले सो हर मिले, नाही किसै परतै। सलोक महला चौथा, एहो मनुआ दृढ़ कर रखिए, गुरमुख लाइए चित, क्यों सास गिरास विसारिए, बहंद्या उठद्या नित। मरण जीवन की चिंता गई, एहो जीड़ा हर प्रभ वस, ज्यों पावे त्यों रख, तू जन नानक नाम बख्श। महला तीजा, मनमुख अहंकारी महल ना जाने, खिन आगे खिन पीछे, सदा बुलाइए महल ना आवे, क्यों कर दुर्गे सीजे। सतगुर का महल विरला जाने, सदा रह कर जोड़, अपनी कृपा करे हर मेरा, नानक ले बहोड़ पौड़ी। सा सेवा कीती सफल है, जित सतगुर का मन मन्ने, जा सतगुर का मन मन्या, ता पाप कसमल पन्ने। उपदेश जे दिता सतगुरु, सो सुनया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या, तिन चढ़ी चवगन वन्ने। एहो चाल निराली गुरमुखी, गुर दिख्या सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा, जिन गुरु गोपिया अपना, तिस ठोर ना ठाओ, हलत पलत दो वै गए, दरगह नाई थाओ। ओ वेड़ा हथ ना आवे, फिर सतगुरु लगे पाए, सतगुर की गणतै कुसिए, दुखे दुख विहाए। सतगुर पुरख निर्वैर है, आपे ले जिस लाए, नानक दर्शन जिना वेखा ले, उन तिना दरगहे ले छड़ाए। महला तीजा, मनमुख अज्ञान दुर्मत अहंकारी, अंतर क्रोध जुए मत हारी। कूड़ कुस्त ओहो पाप कमावे, क्या हो सुने क्या आख सुनावे।
अन्ना बोला खोए उजड़ पाए, मन मुख अंधा आवै जाए। बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए, नानक पुरब लिखिया कमाए पौड़ी। जिनके चित्त कठोर है से बहे ना सतगुर पास, उथै सच वर्त दा कुड़ियारा चित्त उदास। ओए वल छल कर छत कट दे, फिर जाए बहे कुड़ियारा पास। विच सच्चे कूड़ ना गड्डी, मन वेखो को निरजास। कुड़ियार कुड़ियारी जाए रले, सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवा, रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर, संत सहाई नानका वरतै सब जाहर। महला पंजवा, मुंड हो भुले मुंड ते किथै पायन हथ, तिन्नै मारे नानका जे करण कारण समरथ। पौड़ी पंजवी, लै फाहे राती तुरहे प्रभ, जाने प्राणी तके नार, प्राया लुक अंदर ठाणी। सन्नी देन विखम थाए, मिठा मद माणी, करमी आपो अपनी आपे पछोताणी। अजराइल फरिश्ता तिल पीड़े काणी। सलोक महला पंजवा, सेवक सच्चे साके सेई परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा, जो तुर लिखिया लेख प्रभ, मेटना ना जाए, राम नाम तन वखरो नानक सदा त्याए। पौड़ी पंजवी, नारायण लया नांगू ठड़ा, पैर किथै रखै करदा पाप, अमित्या नित विसो चखै। निंदा करदा पच मुआ, विच देही पखै, सच्चै साहिब मारिया कौन तिस नो रखै। नानक तिस शरणागति, जो पुरख अलखै। सलोक महला पंजवा, नरक घोर बहु दुख कणे, अकृत कणा का थान, तिन प्रभ मारे नानका, होए होए मोए हराम। महला पंजवा,